सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़।